याज्ञाकरं सर्वबलधारयो अनाद्य अनंतो दिव्येनि मोक्षांपन मातावन कन्यमारिया तुमांगे गतहा प्राणय ओबगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद अप सतुटु सिहिकरनो तुमियगे दयाबरे आज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुर वलिन हा अनवरत मरनेन गलवेम सलसो मनव मेकी दे अपगे स्वामियो जेसु क्रिसु सहसे उदिसाम अपट लबेवा आमेन।

0: श्रीदेवा
1: इसे स्वामिनी उप सबिन्म सुशुद्ध सिल सुशुद्धता वे उल्पत बोहन से में यही नोहन से गे आत्मन गे अनुभावेन मे पांडु परिशुद्धवाद करण में नपियाय दिब अपे से अदुने मे पांडु अपुदेसा अप स्वामीन वन जेसुस क्रिस्तुन महान से गे श्री शरीर श्री रुधिर बावट पत्वनु संदहाय उन महान से दुख सहित मरनेट सिय कमेत्तिन कमेत्तिन पवरादी मिट पेर पूपे रागेनो बहान से तुति पुदा एक खड़ा मिसी कीमिन श्री श्राव के इंट दुन सेक ओब सम में गिन अनुभव करन सब बिन में उबुदेसा पवरादेनु लबन मागे शरीर आई රාත්‍රි භෝජනයේ වැළඳූ පසුව උන්වහන්සේ සේම කුසලානන්ද රැගෙන නැවත තුති පුදාමිසේ කියමින් සිය ශ්‍රාවකයන්ට දුන්සේක ඔබ සැම මෙයින්ගෙන පානය කරන්න සැබවින්ම මෙය අභිනව වූද අනන්ත වූද ගිවිසුමේ මාගේ රුධිර කුසලානයි පෞකමාව සඳහා ඔබ උදෙසාද සියලු මනුෂ්‍යයන් උදෙසාද වගුරුණු ලබන්නේ මාසී කිරීම පිණිස මෙය සිදු කරන්නේ